0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 MHz.
1: बडा दशैं विशेष दुलेगौंडा सांस्कृतिक महोत्सव 2083
2: मिति यही असोज 12 गतेदेखि 22 गतेसम्म

हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: विवाह को कपड़ा स्तरीय कोट सूट पैंट स्कूल कलेज को ड्रेस पाइन का साथ ही लेडीज आइटम साड़ी लेगिंस टप कुर्ता सुरुवाल रंग का कपड़ा होलसेल मूल्य में बिक्री साथ ही इमरजेन्सी सिलाई को समेत व्यवस्था
1: संपर्क यूनाइटेड सप्लायर्स दुलेगौड़ा हेल्प चोक प्रोपाइटर कृष्णराज पंडित फोन 065 414 0008

0: स्टूडियो तानचेन
1: अहिले रातिको 8 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160 95301।
3: सूचना उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड को 17 वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुन गइरहेको हुँदा यहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मिति यही असोज 27 गते मंगलबार, समय 11 बजे, स्थान नेवार समाज भवन शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 4 दुलेगौड़ा। साधारण सभामा सहभागी हुने शेष सदस्यलाई यातायात खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अनुरोध उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा तनहु।
4: एक सय 3 थोप्लो 8 अन्तर्मनको आवाज।

0: 103.8 अन्डरमन को आवाज
1: सेक्सन 1 स्टुडियो तालचेर
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301